एक चतुर नार करके चिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज परवाज रेडियो मैं हां ताडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक नमस्ते अदाब दोस्तों तुसी सुन रहे हो भैनों ते भरावो परवाज रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301
1: सत श्री अकाल शुक्रिया धन्यवाद नमस्ते आदाब सारे सत्कारयोग वीर भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी और प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं तुहाडे नाल रल मिल के और अज दे प्रोग्राम दे विच आपां कुछ प्यारे प्यारे गीत गाने सुणांगे ते गाणियां तों बाद फिर आपां चलांगे जी खबरां वल ओह खबरां होणगियां दुनिया दियां अजकल जो कुछ वापर रहा दुनिया दे उपर किन्नियां जंगां लगियां होईयां उहनां दी की सिचुएशन आ अमेरिका की सियासत बारे गल करांगे इंडिया की सियासत बारे भी गल करांगे कि उत्थे की हो रहा सो बहुत सारा कुछ मटीरियल लैके लाल सिंह चीमा हुणी पहुंचे पुजणगे जी उस तो बाद शायद डॉक्टर साहब गुरदीप सिंह संधु साहब भी अपने नाल रलणगे और दो घंटे का प्रोग्राम आपां लैके आ गए हां दिल दी आवाज साडे प्रोग्राम का नां हैगा जी दिल दी आवाज फोन नंबर हैगा जी 732-874-3259 इहदे उपर मैसेज करना होवे ते तुसी व्हाट्सएप दे उपर भी जाके कर सकदे हो रेगुलर कॉल दे उपर भी मैसेज कर सकदे हो सो सारयां दा शुक्रिया धन्नवाद सो दोस्तो इदां करिए कि अपने दोस्तां मित्रां नूं भी दस्या करो कि प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडी सेवा दे विच हाजर है ताकि होर भी स्रोते जिहड़े अपने नाल जुड़ सकन तो डाउनलोड ऐप नूं जिहड़ा हैगा www.pravazradio.com ते उपर तुसीं जाके डाउनलोड कर सकदे हो ऐप नूं ओह करा सकदे हो अपने दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं क्योंकि साडे प्रोग्राम म्यारी हुंदे आ जी बहुत म्यारी हुंदे आ वर्गल नहीं हुंदा और सच्चाई ते असी हमेशा पहरा दिंदे आ सच कहण दी हिम्मत रखदे आ चाहे वह अमेरिका च होवे चाहे इंडिया च होवे क्योंकि जदों मफाद ही किसी चीज का नहीं तो फिर सच बोलन च कोई हानि नहीं है असी बोलदे ही सच आ साडे जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे आ सच दे आधार दे उपर हुंदे आ सो वीरो ते भैणो भरावो प्रोग्राम नूं सुनिया करो और इन्हें शेयर भी कर दिया करो जे तुहाडे हिस्से च कोई गल आउंदी है बड़ी मेहरबानी लोग गीत सुनदे हैं जी मिस पूजा ते गीता जैलदार लो जी तुहाडी सेवा विच आपां पहला गीत लाते हैं

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, हाँ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी, ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचो एक है जी, ते आज असी उना दे मुखार बिंद तो श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ थोड़े नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन जी।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3258 732-874-3259 and
1: 856-397-0301 ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਲੋ ਜੀ

0: चले रंग लुक गए ने।
1: वाह,
0: ए लाइन अच्छी
1: बहुत बहुत बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तुसी आए रौनकां लाइयां, कदी कदी मारिया करो चक्कर
0: जी। एक बार फिर मेरे वालों थोड़े सारा लिए बहुत प्यार सत्कार, हसदे वसदे रहो जी, ये मेरी दिली ख्वाहिश है थोड़े सारे वास्ते, मेहरबानी,
1: थैंक यू। मैं थोड़े नाम एक शेयर करांगा
0: जी,
1: के मैं बिना गुनाह फांसी ते लटकी ते कान कान मेरे नाल गुस्से। मैं बिना गुनाह फांसी ते लटकी ते कान कान मेरे नाल गुस्से। मैं दुनिया भी रखी ते इश्क भी कीता, आज दोए मेरे नाल गुस्से, आज दोए मेरे नाल गुस्से। जीउंदे वास्ते रहो जी, रौनकां लाउण वास्ते बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ते हुण चलदे आ जी इटली, बाद च पाकिस्तान चलांगे। इटली वाले सज्जन साडे कित्थे ने, ए आ लो जी, उन्हां दी मिस कॉल, मिस कॉल, मिस कॉल, आ लो राजा।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक गीत जिहड़ा है मैं आप जी दी नजर कर रही हूँ, विशेष करके
0: थैंक यू जी।
1: जिहड़ा हुण मैं सुनाउण लगी
0: हाँ जी।
1: हूँ।

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे प्यार दूं।
1: वाह जी वाह वाह। राधना जी आज मदर डेरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तुसी
0: पता
1: दुनिया दिया सोहनिया मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
0: जी बिल्कुल। एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी। हाँ जी
0: हाँ जी। मंजली का मतलब

नमस्ते आदाब दोस्तों जी त्यौहार और मिलकर इस प्रोग्राम का आनंद माणते हैं। पहला गीत बलकार सिद्धू का पंजे पीर मनावा।

probando todo. ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट से खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते प्रात्री भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाहला आप सब की जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा

दोस्त है होस्ट दर्शन सिंह खक, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट। नमस्ते आदाब दोस्तों, तुसी सुन रहे हो भैनों ते भरावो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज़ प्रोग्राम न्यूयॉर्क न्यूजर्सी।

0: गीत और सुनते हैं जिसेंद्र सिंह दास।
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई, आज तो नजारा आ गया भाई।
2: देखो ना जी, इतनी सोनी जन लेके आया।
1: लो भाई, अमली का ब्याह भी हो गया। वो ताली देता वाले ला कोई शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई, जिंदा बहुत पैदा पैदा हो जाए
2: मालको ला दें।
1: भाई वाह वाह वाह वा।